0: moins de bruit, moins de promesses, moins de machines qui parlent à notre place. Regardez ailleurs et écoutez autrement. Comprendre ce qui change et surtout ce qui reste humain. Moins de hype, plus de monde. Anthropology Lab FM. Pensez l'intelligence artificielle depuis le monde réel.
1: नमस्कार, आज के इस विशेष विश्लेषण में एक बेहद ही आकर्षक और जटिल विरोधाभास पर बात होने वाली है। एक तरफ दुनिया के कुछ ऐसे समुदाय हैं जो पूरी तरह से भौतिक अलगाव में रहते हैं, और दूसरी तरफ है हमारी आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था जिसकी पहुंच मानो हर जगह है। अब सवाल ये उठता है कि जब कोई समुदाय बाहरी दुनिया से संपर्क न रखने का बिल्कुल स्पष्ट निर्णय लेता है, तो इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस युग में उनके इस अधिकार का क्या होता है? आज हम इसी विषय की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे हमारी डिजिटल दुनिया की वजह से जमीनी भौतिक सीमाएं चुनौती का सामना कर रही हैं। चलिए सीधे सैटेलाइट तस्वीर पर नजर डालते हैं। ये है उत्तर सेंटिनल द्वीप, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक ऐसा हिस्सा है जहां पहुंचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। भारत सरकार यहां बहुत ही सख्त नीति अपनाती है, जिसे आंखें खुली हाथ दूर या आईज ऑन हैंड्स ऑफ कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है दूर से निगरानी करना ताकि कोई घुसपैठ ना हो, लेकिन उनके जीवन में बिल्कुल भी दखल ना देना। इस द्वीप और इसके चारों ओर के 5 किलोमीटर के समुद्री क्षेत्र को एक संरक्षित आदिवासी रिजर्व घोषित किया गया है। ये एक ऐसी सीमा है जिसे पार करने की मनाही है, लेकिन तकनीक ने इस घुसपैठ का तरीका पूरी तरह से बदल दिया है। मार्च 2025 की एक घटना पर गौर करते हैं। माइखाइलो विक्टोरोविच पोलियाकोव नाम का एक व्यक्ति इस प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर गया। दिलचस्प बात यह है कि वो अपने साथ कोई हथियार या बुरा इरादा लेकर नहीं गया था, बल्कि उसके पास सिर्फ एक गोप्रो कैमरा और एक डाइट कोक थी। एक घंटे बाद वो वापस लौट आया। उसने सेंटिनल समुदाय के साथ कोई शारीरिक संपर्क नहीं किया, लेकिन उसने कुछ और बहुत कीमती चीज निकाल ली, वो थी तस्वीरें। 2 दिन बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगा। लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया कि किसी समुदाय को छुए बिना भी उनकी सीमाओं का उल्लंघन करके कंटेंट निकाला जा सकता है।
2: तो ये घटना हमें हमारी चर्चा के पहले मुख्य आधार की ओर ले जाती है, देखना।
1: कैमरे के लेंस के जरिए किसी को देखना कभी भी सिर्फ एक साधारण कृत्य नहीं होता। इसमें एक तरह का शक्ति संतुलन या कहें कि असंतुलन छिपा होता है। इंसानों में हमेशा से आधुनिकता से दूर रहने वाले लोगों को देखने की एक गहरी जिज्ञासा रही है। इस अंतर को समझने के लिए उत्तर सेंटिनल की स्थिति की तुलना जारवा समुदाय से करना बहुत जरूरी है। जहां सेंटिनल लोग स्ट्रिक्ट अलगाव में सुरक्षित हैं, वहीं अंडमान में ही रहने वाले जारवा समुदाय का इतिहास बहुत ही दर्दनाक रहा है। अंडमान ट्रंक रोड बनने के बाद उनके क्षेत्र में बाहरी लोगों की भीड़ लग गई। नतीजतन वहां ह्यूमन सफारी जैसी अमानवीय प्रथा शुरू हो गई, जहां पर्यटकों को ये लोग किसी चिड़ियाघर के आकर्षण की तरह दिखाए जाते थे।
3: और यहीं से हम दूसरे आधार पर आते हैं,

0: किसी चीज को सामग्री यानी कंटेंट में बदलना। जब जमीनी स्तर पर पाबंदियां लगीं और इन ह्यूमन सफारियों को रोकने की कोशिश की गई, तो क्या लोगों की वो देखने की इच्छा खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, उसने बस अपनी जगह बदल ली और वो डिजिटल दुनिया में आ गई। शोधकर्ता अमिताभ विक्रम द्विवेदी ने 2026 में इस बदलाव को एल्गोरिथमिक दृष्टि या एल्गोरिथमिक गेज का नाम दिया। उनके मुताबिक पुराने समय में कोई व्यक्ति बस जाकर देखता था, लेकिन आज एक पूरी डिजिटल मशीनरी काम कर रही है। पहले प्लेटफॉर्म ये दर्ज करते हैं कि हम क्या देख रहे हैं, फिर उनके एल्गोरिदम हमारी उस जिज्ञासा को और भड़काते हैं, और देखते ही देखते वो साधारण सी अमूर्त जिज्ञासा व्यवहारिक यात्रा मार्गों, जीपीएस निर्देशांकों और वहां कैसे पहुंचे जैसे निर्देशों में बदल जाती है।
1: मानव शास्त्रियों ने इस डिजिटल घुसपैठ पर गहरी चिंता जताई है। ओरोबिटगक का मानना है कि कैमरा उठाना कोई तटस्थ काम नहीं है, यह देखने वाले और देखे जाने वाले के बीच एक संबंध बना देता है, चाहे वो संबंध कितना भी एक तरफा क्यों ना हो। वहीं शोधकर्ता हिरई यह समझाते हैं कि कैसे बाहर से ली गई तस्वीरें वास्तव में उस स्थानीय संस्कृति को बाहरी दुनिया की उम्मीदों के सांचे में ढाल देती हैं। और वलडेरेस का तर्क तो और भी सीधा है, जब कैमरे से किसी की छवि बनाई जाती है तो उसके लिए नैतिक सहमति का होना बेहद जरूरी है, और ये जिम्मेदारी सिर्फ वीडियो बनाने वाले की नहीं बल्कि उसे पब्लिश करने और उससे पैसे कमाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की भी है।
0: अब जरा एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े पर नजर डालते हैं। पूरे 4 करोड़ सर्वाइवल इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं ने पाया है कि यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर इन अलगावों में रहने वाले समुदायों के वीडियो और तस्वीरों पर नजर रखने वाले अकाउंट्स के कुल फॉलोअर्स की संख्या 4 करोड़ से भी ज्यादा है। ये आंकड़ा डिजिटल ताक झांक के उस विशाल और डरावने पैमाने को सामने रखता है। हो सकता है कि इनमें से हर कोई वहां जाकर नियम न तोड़ना चाहता हो, लेकिन ये साफ दिखाता है कि ऐसी रहस्यमयी और अछूती सामग्री का बाजार कितना विशाल हो चुका है।
2: ये सब हमारी अटेंशन इकोनॉमी के एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाले तर्क को जन्म देता है, जिसे हम अगम्यता का मूल्य कह सकते हैं। ऑनलाइन दुनिया में किसी समुदाय तक पहुंचना जितना मुश्किल होता है, उसकी तस्वीरें उतनी ही ज्यादा एक्सक्लूसिव मानी जाती हैं। अगर कोई समुदाय साफ तौर पर बाहरी दुनिया से संपर्क करने से मना कर देता है, तो डिजिटल दुनिया में उनकी कीमत और बढ़ जाती है। उन्हें लॉस्ट ट्राइब्स या जंगली जैसे सनसनीखेज शब्दों के साथ पेश किया जाता है। वीडियो के थंबनेल और टाइटल से ही व्यूज बटोरने का खेल शुरू हो जाता है, जो लाखों की कमाई में बदल जाता है।
0: अब बात करते हैं तीसरे और अंतिम आधार की, बाहर बने रहने की संभावना।
1: तो सवाल ये है कि क्या इस विशाल डिजिटल जाल से पूरी तरह बाहर रहना आज के समय में मुमकिन है? एक समुदाय जो हमारी फोन स्क्रीन पर मौजूद नहीं है, वो कोई खालीपन नहीं है जिसे जबरदस्ती डेटा से भरना जरूरी हो, वो उनका अपना स्वतंत्र चुनाव है। जनवरी 2026 में इस बात को बहुत बड़ी मान्यता मिली जब जकार्ता घोषणा पत्र को मंजूरी दी गई। इस दस्तावेज ने एक बहुत ही बुनियादी बात स्पष्ट कर दी, जब हम ऐसे संपर्क रहित समुदायों के मामले में सहमति शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, कोई हस्तक्षेप नहीं, उन्हें अकेला छोड़ देना। यह सिर्फ निजता का मामला नहीं है बल्कि बाहरी बीमारियों, हिंसा और अपनी जमीन से बेदखल होने से बचने की उनकी अपनी एक सोची समझी रणनीति है।
3: और यहीं से जन्म होता है एक बिल्कुल नई अवधारणा का, प्रकट न होने का अधिकार। हालांकि ये कोई स्थापित कानूनी शब्द नहीं है, लेकिन ये उन पुराने भौतिक अधिकारों जैसे खुद फैसले लेने का अधिकार, अपने क्षेत्र में सुरक्षित रहने का अधिकार और किसी से संपर्क न करने की इच्छा को आज की डिजिटल दुनिया की भाषा में अनुवाद करने का एक शक्तिशाली तरीका है। इसे एक ऐसी डिजिटल ढाल के रूप में देखा जा सकता है जो इन अछूते समुदायों को इस अंधाधुंध डेटा लूटने वाले युग से बचाती है।
4: इसे गहराई से समझने के लिए भूल जाने के अधिकार यानी राइट टू बी फॉरगॉटन से इसकी तुलना करना सही रहेगा। भूल जाने का अधिकार तब लागू होता है जब कोई जानकारी पहले ही इंटरनेट पर आ चुकी हो और अब उससे हटाने की मांग की जा रही हो, लेकिन ये जो प्रकट न होने का अधिकार है, ये तो बुनियाद पर ही प्रहार करता है। ये उस पूरे सिस्टम से सवाल पूछता है कि क्या आपको पहली बार में ही वो तस्वीर लेने या वो डेटा कैप्चर करने का कोई अधिकार था भी? ये डेटा मिटाने की नहीं बल्कि डेटा न बनने देने की लड़ाई है।
2: और अंत में हमारी चर्चा का निष्कर्ष, कमजोर पड़ती सीमाएं।
5: हमारी आधुनिक तकनीक हर चीज का नक्शा बनाना चाहती है, हर रहस्य को डेटा में बदलना चाहती है। ऐसे में अलगाव में रहने वाले ये समुदाय हमारे सामने एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा करते हैं। जरा याद कीजिए, पोलियाकोव उस द्वीप पर सोना लूटने नहीं गया था, वो सिर्फ एक गोप्रो कैमरा लेकर गया था।
1: जमीनी स्तर पर भौतिक सीमाओं का होना बहुत जरूरी है, लेकिन हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि यदि डिजिटल अवसंरचना सीमा पार करना सिखाती है तो सुरक्षा की सीमा स्वयं कमजोर पड़ जाती है। जब हमारे एल्गोरिदम महज जिज्ञासा को यात्रा के निर्देशों में बदल देते हैं तो हम अनजाने में ही उस अलगाव को हमेशा के लिए खतरे में डाल देते हैं। इस विचार के साथ ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। सोचने के लिए बहुत कुछ है।

0: गहराई से समझने के लिए हम स्टार और रूल एडर के एक बहुत ही प्रभावशाली सिद्धांत का सहारा ले सकते हैं। उनका साफ मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब केवल तारों का जाल, सर्वर या कुछ भौतिक वस्तुएं भर नहीं है।
1: बिल्कुल सही। ये असल में संबंध परक व्यवस्थाओं, मानकों और पूरे के पूरे समुदायों में गहराई से गुंथा हुआ एक नेटवर्क है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जो चीज एक विकसित देश के लिए बिल्कुल अदृश्य इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह सुचारू रूप से काम कर रही है, वही चीज किसी विकासशील देश के लिए आवश्यकताओं, निर्भरताओं और दुर्गम बाधाओं की एक बहुत बड़ी दीवार बन सकती है।
0: और जब हम इन भौतिक सीमाओं की बात करते हैं तो इसमें कई चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि कंप्यूट पावर, माइक्रोचिप्स, बड़े बड़े डेटा सेंटर, सुचारू बिजली की ग्रिड, भाषाई संसाधन और जाहिर है तकनीकी ज्ञान।
2: जरा सोचिए, एक बहुत ही बेहतरीन ओपन मॉडल डाउनलोड कर भी लिया, लेकिन वो तब तक पूरी तरह से बेकार है जब तक उसे चलाने के लिए 24 घंटे बिजली ना हो, इम्पोर्ट किए गए एडवांस चिप्स ना हो और डेटा को प्रोसेस करने वाले लोकल डेटा सेंटर मौजूद ना हो। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर का कोड नहीं है, बल्कि यह पूरी की पूरी भौतिक और संस्थागत सप्लाई चेन है। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि यह क्षमता सिर्फ ओपन वेट्स दे देने से कभी भी अपने आप ट्रांसफर नहीं हो जाती।
3: अब रुख करते हैं चौथे खंड की ओर, भारत और चीन का समीकरण।
0: यहाँ ग्लोबल साउथ के अंदर ही संस्थागत प्रतिस्पर्धा और सहयोग का एक बहुत ही जटिल ताना बाना मौजूद है। एक तरफ अगर हम देखें तो चीन की WAICO यानी वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पहल है, जिसकी शुरुआत शंघाई से हुई थी, और वहीं दूसरी तरफ भारत की अपनी बिल्कुल अलग और विशिष्ट नीतियां हैं, जैसे कि नई दिल्ली का AI इम्पैक्ट समिट और आत्मनिर्भर भारत के तहत तकनीकी स्वायत्तता की नीतियां। दिलचस्प बात क्या है पता है? भारत वाइको के संस्थापक देशों की सूची में नहीं है। ये इस बात का एक बड़ा संकेत है कि भारत ब्रिक्स का उपयोग एक बहुध्रुवीय या मल्टीपोलर दुनिया बनाने की अपनी व्यापक रणनीति के तहत कर रहा है। वो अपनी तकनीकी प्रगति के लिए केवल ब्रिक्स या चीन के बनाए ढांचों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। तो यहाँ हमें संस्थागत जगों पर सहयोग का ओवरलैप भी दिखता है और एक बहुत ही स्पष्ट रणनीतिक दूरी भी।
4: यह हमें पांचवें खंड पर लाता है, डेटा सेट में संस्कृति और ज्ञान।
5: देखिए, ब्रिक्स घोषणा पत्र में एक अत्यंत गंभीर जोखिम की तरफ इशारा किया गया है, और वो है AI डेटा सेट में सांस्कृतिक ज्ञान और विरासत का गलत प्रतिनिधित्व या उसका दुरुपयोग होना। ये बहुत ही अहम बिंदु है, क्योंकि संप्रभुता का मतलब सिर्फ ये गिनना नहीं है कि किसी देश में कितने चिप्स हैं या कितने बड़े डेटा सेंटर्स हैं। इसका मतलब ये भी है कि वो AI सिस्टम असल में जानता क्या है, वो किसी राष्ट्र की संस्कृति को कैसे दिखा रहा है, और क्या वो ग्लोबल साउथ के बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान को पूरी तरह से अनदेखा तो नहीं कर रहा। अगर इन AI प्रणालियों के ज्ञान और प्रतिनिधित्व पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो सच मानिए ये भी एक प्रकार की तकनीकी गुलामी या अधीनता ही है।
0: और अब हम इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण और छठे खंड पर पहुंच गए हैं, तकनीकी संप्रभुता और बाहर निकलने यानी एग्जिट का विकल्प।
3: तो अब तक की चर्चा के बाद ये बड़ा सवाल उभरकर सामने आता है, अगर सच्ची तकनीकी संप्रभुता केवल ओपन मॉडल तक पहुंच या एक्सेस होने तक सीमित नहीं है, तो फिर असल में वह है क्या? ये सवाल पूरे लेख का सार समेटे हुए हैं। वास्तविक स्वायत्तता का मतलब है एक ऐसी संस्थागत शक्ति होना जिसके जरिए आप AI सिस्टम को अपनी शर्तों पर ऑडिट कर सकें, उसे स्थानीय स्तर पर होस्ट कर सकें और अपनी जरूरतों के हिसाब से उसे रेगुलेट कर सकें। किसी चीज का महज इस्तेमाल कर पाना स्वायत्तता नहीं है, बल्कि उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर पाना स्वायत्तता है।
0: जो हमें इस चर्चा के अंतिम और शायद सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष की ओर ले जाता है। एक बार इस कोट को ध्यान से सुनिए। संप्रभुता किसी अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ सकने की शक्ति है बिना उस पर निर्मित सब कुछ खोए।
6: क्या कमाल का विचार है! ये इस बात का एक बहुत ही गहरा उदाहरण है कि महज पहुंच होना ही सब कुछ नहीं होता। सच्ची संप्रभुता तब होती है जब ये चुनने की पूरी आजादी हो कि किसी तकनीक या नेटवर्क से कब बाहर निकला जा सकता है, और वो भी अपना सारा डेटा, सिस्टम और अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से सुरक्षित रखते हुए।
3: बिल्कुल। तो अंत में यह समझना बेहद जरूरी है कि खुला होना अपने आप में साझा होना नहीं है, और महज साझा होना अपने आप तकनीकी संप्रभुता की गारंटी नहीं देता। असली ताकत उस इंफ्रास्ट्रक्चर को पैदा करने, उस पर अपना स्थानीय नियंत्रण रखने, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर जरूरत पड़े तो बिना डरे उससे बाहर निकल पाने की क्षमता में है। क्या हम वाकई आज की तारीख में इतने स्वतंत्र हैं?
0: इसी शक्तिशाली और विचारोत्तेजक सवाल के साथ एआई एंथ्रोपोलॉजी लैब के इस गहन विश्लेषण पर हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं संपन्न होता है।